भगवान श्री राम वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उनका राज्याभिषेक होना है। हनुमान जी तो वानर थे, वन में उनका वास था।

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: संगीत 106.1 FM, more than just music. This is us.
1: देखो जी देखो, ते मुंडे खड़े, एना नो पूछो एना दा काम की है थे, तो आड़ा शेयर केड़ा है मुंडे हो?